0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। नबी साज के ग्रंथ से लिया गया यह वाक्यांश नाना नानी एवं बुजुर्गों के 6वें विश्व दिवस के लिए पोप लियो 14वें के संदेश की विषय वस्तु है।
1: Cari nonni, cari nipoti, buongiorno, benvenuti.
0: 26 जुलाई एवं जुलाई महीना का अंतिम रविवार कार्तिक कलीसिया के जीवन में एक महत्वपूर्ण दिन है। आज कलीसिया यीशु के नाना नानी संत अन्ना एवं संत जोकिम का पर्व मना रही है और इसी दिन नाना नानी एवं बुजुर्गों के लिए 6वां विश्व दिवस भी मनाया जा रहा है। संयोग से ये दोनों ही अवसर एक साथ मनाए जा रहे हैं। 2021 में पोप फ्रांसिस द्वारा स्थापित इस दिवस का उद्देश्य है यह चिंतन करना कि दादा दादी और बुजुर्गों की उपस्थिति हर परिवार एवं कलीसियाई समुदाय में आशा का चिन्ह कैसे बन सकती है। तो लीजिए प्रस्तुत है नाना नानी एवं बुजुर्गों के 6वें विश्व दिवस पर संत पापा लियो 14वें का संदेश।
2: Cari fratelli e sorelle,
0: पोप लियो 14वें ने अपने संदेश में लिखा, प्यारे भाइयों एवं बहनों, नबी ईसाईस के माध्यम से प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं कि वे हम में से किसी को भी कभी नहीं भूलेंगे। वे हमें भरोसा दिलाते हैं कि उन्होंने हमें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है और उनका प्यार एक माँ के अपने बच्चों के लिए प्यार से भी ज्यादा है। नबी हमें एक अंतरंग एवं गहन बातचीत की झलक देते हैं जिसमें ईश्वर परिचित शब्दों में हर इंसान से अलग अलग और सभी लोगों से बात करते हैं। आज भी हम इन शब्दों को हम प्रत्येक के लिए कह सकते हैं और हर कोई सुन सकता है। मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। ये शब्द हमें सांत्वना एवं उम्मीद से भर देते हैं। यह उस दर्दनाक एहसास का जवाब है जो दिल को परेशान करता कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। पवित्र धर्म ग्रंथ में खासकर भजन संहिता में कितनी बार उन लोगों की निराशा से प्रार्थना निकलती है जिन्हें लगता है कि उनके जीवन में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं और उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। भुला दिए जाने का दर्दनाक एहसास दुर्भाग्य से बहुत से लोगों को होता है और उनमें काफी बुजुर्ग लोग भी शामिल हैं। पोप ने कहा कि ईश्वर का प्यार जो किसी को नहीं भूलता खुद को न्याय के कार्य और उस गुमनामी के जवाब के रूप में प्रस्तुत करता है जिसमें मानव जीवन अक्सर खो जाती है। खासकर कई बुजुर्गों का जीवन एक ऐसे पर्दे से ढका हुआ लगता है जो उनके चेहरों के हाव भाव को धुंधला कर देता और उन्हें गुमनामी में ढक देता है। ऐसे उन घरों में होता है जहां अकेलापन छाया रहता है और उन देखभाल केंद्रों में भी जहां इंसान की पहचान एक बेड नंबर या बीमारी तक सिमट जाने का खतरा होता है। अतः संत पापा ने कहा कि दादा दादी और बुजुर्गों का विश्व दिवस

एक ही शब्द मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा एक कोमल और प्यार भरी मुलाकात का रूप ले। एक ऐसे दौर में जो तेजी और बिखराव को बढ़ावा दे रहा है, मानव अभी भी ध्यान देने वाले दिमाग, अच्छे शब्दों और कोमलता दिखाने वाले हाथों से देखभाल और पहचान पाने के लिए तरसता है। इन सभी कारणों से कलीसिया खुशी से प्रभु की प्रतिज्ञा की घोषणा करती है, मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगी। संत पापा ने कहा कि यह किसी भी उम्र में खुशी की बात है, लेकिन विशेषकर तब जब हम युवा नहीं रह जाते। यह जानना, जैसा कि पोप जॉन पॉल प्रथम ने कहा था, कि हम ईश्वर की ओर से अमर प्रेम को ग्रहण करने वाले हैं। हम जानते हैं कि जब अंधेरा लगता है तब भी उनकी आंखें हमेशा हम पर खुली रहती हैं। वे हमारे पिता हैं और इससे भी अधिक वे हमारी माँ हैं। इसलिए ईश्वर की बाहों में लौटने का निमंत्रण किसी भी उम्र में सार्थक है। बहुत से लोगों के लिए ईश्वर की कोमल करुणा का अनुभव जीवन के लंबे सफर के दौरान होता है और कभी कभी तो जीवन के अंतिम चरण में जाकर ही होता है। वास्तव में पहले की तुलना में आज यह अधिक सामान्य हो गया है कि लोग बिना किसी सच्चे आस्था अनुभव के ही वृद्धावस्था तक पहुँच जाते हैं। ऐसे मामलों में वृद्धावस्था, विशेषकर इस जीवन काल में अधिक तीव्रता से उठने वाले प्रश्नों के कारण, आध्यात्मिक जीवन आरंभ करने या उसे फिर से अपनाने का उपयुक्त समय बन सकती है। इस नई आध्यात्मिक यात्रा में व्यक्ति यह पहचान सकता है कि ईश्वर, जैसा कि संत अगस्तीन कहते हैं, एक माँ है। उस ईश्वर की ओर जो हमारे निकट आते और जिनकी कोमलता को हम पहचानना सीखते हैं, हम प्रार्थना में संतान सुलभ विश्वास के साथ मुड़ सकते हैं। उनकी ओर लौटने या उनकी शरण में आने के लिए कभी भी बहुत देर नहीं होती। यह हर व्यक्ति के लिए एक महान अनुग्रह सिद्ध हो सकता है। इसलिए पहले से कहीं अधिक यह आवश्यक है कि हम आपके साथ इस बात पर चिंतन करें कि जब दुर्बलता, जो जन्म से ही मानव के जीवन संगिनी रही है, जीवन पर हावी होने लगती है, तब हमारा बुलावा क्या है। संत पापा ने कहा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी नाजुकता से मत डरिए। यही दुर्बलता अपने भीतर एक नई संभावना समेटे हुए है, जो जीवन के अन्य सभी चरणों पर भी नई रोशनी डालती है। वास्तव में जब हम अपनी नाजुकता को स्वीकार करते हैं, तब हमारे हृदय एक दूसरे का सहारा बनने के लिए खुल जाते हैं और उस प्रभु को पुकारते हैं जो ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसे कोई भी मानवीय शक्ति सुनिश्चित नहीं कर सकती। हृदयों का गहरा मेल मिलाप और उनके साथ सच्ची शांति, इस तरह हम एक ख्रिस्ते के रूप में अपने बुढ़ापा को जी सकते हैं, नाजुक फिर भी बुलाए गए। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत नाना नानी और बुजुर्गों के 6वें विश्व दिवस पर पोप लियो 14वें के संदेश को सुन रहे थे। अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका एक और सुबह। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओ, आपने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो शराब की लत में बुरी तरह फंसे हुए हैं। शराब की लत एक गंभीर बीमारी है। शराब की वजह से उनकी जिंदगी में अनेक शारीरिक मानसिक परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। उनकी कार्य क्षमता में कमी आती है, अच्छी भली नौकरी चली जाती है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद व्यक्ति शराब को नहीं छोड़ पाता। यही शराब का सबसे बड़ा दुर्गुण है। श्रोताओ, ऐसी अवस्था में शराबी इस लत पर काबू पाने का दृढ़ निश्चय करने पर भी अकेला इस बीमारी से लड़ नहीं सकता। इस लत को छुड़वाने का काम घर से शुरू होता है। उसे अपने परिवार, अपने मित्रों के सहारे की जरूरत होती है, जो उनके आत्मविश्वास को मजबूत कर सके, उन्हें सहारा दे सके।

0: आशा है आज की नाटिका इस बीमारी में फंसे लोगों का मनोबल बढ़ा सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका एक और सुबह।
1: सुनो, कल रश्मि की स्कूल की फीस भरना है। मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे और तुम हो कि अनसुनी कर रहे हो।
2: सुन लिया मैंने, कोई बहरा नहीं हूँ मैं, मेरे पास पैसे नहीं है। तेरे पास हो तो तू भर दे इसकी फीस।
1: हाँ हाँ, तुम्हारे पास क्यों होंगे इसकी फीस के पैसे? तुम्हारे पास तो सिर्फ अपनी शराब पीने के लिए पैसे होते हैं, सिर्फ शराब के लिए।
2: तो क्या शराब में अपने पैसे की पीता हूँ? अपनी कमाई की, तेरी कमाई की नहीं पीता। तू अपनी कमाई अपने पास रख।
1: आखिर शराब से फायदा क्या है तुम्हें? तुम्हें पता है शराब में अगर किसी कीड़े को डालो तो वो भी मर जाता है।
2: देखा तूने, पेट के लिए कितनी अच्छी है शराब, तभी तो मैं पेट के कीड़े मारने के लिए शराब पीता हूँ।
1: शराब जैसी बुरी चीज तुम्हें इतनी पसंद कैसे है?
2: कमाल करती है तू, मुझे तो तू भी बहुत पसंद है सरिता।
1: तुम्हें पता है शराब ने कई अच्छे अच्छे घर तबाह कर दिए हैं।
2: और तुझे पता है शराब ने कई अच्छे अच्छे घरों को बना भी दिया है। बड़े बड़े व्यापारों की डीलिंग पार्टियों में शराब के साथ ही होती है।
1: तुम उनकी बात छोड़ो, आदमी के पास पैसा आते ही तमाम बुराइयां भी पैसे के साथ साथ चली आती हैं। और जब शराब जैसी बुराई हावी होती है तो फिर पैसा कहाँ गया उसका पता भी नहीं चलता।
3: मम्मी ठीक कहती हैं पापा।
2: तू चुप रह, ज्यादा समझदार न बन।
1: क्यों, कि तुम्हारी समझदारी पर अतिक्रमण कर रही है क्या? आखिर तुम समझते क्यों नहीं कि शराब सेहत और घर दोनों के लिए अच्छी नहीं है?
2: जब तू शराब पीती ही नहीं है तो तुझे क्या पता कि शराब सेहत और घर के लिए अच्छी होती है या नहीं? अरे शराब पीने से जहाँ सेहत बढ़ती है वहीं घर में प्यार भी बढ़ता है, समझी तू?
1: सिर्फ ऊपर ऊपर से ही ये दोनों चीजें बढ़ती हैं, भीतर ही भीतर तो शराब ही इन्हें खोखला बनाती है।
2: ये तेरा वहम है सरिता, पीने से आदमी अपने में रहता है और असीम शांति और मस्ती का एहसास रहता है।
1: अच्छा, तो क्या शराब इतनी अच्छी चीज है?
2: तो फिर तुझे क्या पता, तभी तो मैं पीता हूँ।
1: अच्छा, तब तो फिर शराब मुझे भी चखनी पड़ेगी कि क्या वाकई में शराब इतनी अच्छी है।
2: अरे छोड़, क्यों मजाक करती है? शराब और अब चखना तेरे बस की बात नहीं, इसे तो मर्द ही पी सकते हैं, मर्द। अब जाने दे मुझे, मेरा टाइम हो गया।
1: बस चले फिर शराब का गुणगान कर शराब पीने। आज 2 दिन हो गए इन्हें ऑफिस से छुट्टी लिए, अब बैठेंगे जाकर अपने शराबी दोस्तों के बीच। ठीक है, तुम कहते हो ना कि शराब चखना मेरे बस की बात नहीं, तो अब मैं भी इन्हें शराब चख कर ही बताऊंगी।
3: तो क्या मम्मी तुम भी शराब पियोगी?
1: बस अब तू देखती जा बेटी कि मैं क्या करती हूँ।
2: रश्मि, क्या हुआ है तेरी माँ को? ये इस तरह झूम क्यों हो रही है? इसकी तो आंखें भी बंद है।
3: कुछ नहीं पापा, शायद मम्मी की तबीयत खराब है।
2: तबीयत खराब है? जरा मुझे भी तो देखने दे। हैं? शराब की बदबू? रश्मि, तेरी माँ की हिम्मत कैसे हुई शराब पीने की? कहाँ से आ रही हो तुम दोनों?
3: हम लोग वो सिरे वाले महेश अंकल के यहाँ से आ रहे हैं। पापा आप भी तो शराब पीते हैं, आप तो रोज शराब पीते हैं। अगर आज मम्मी ने शराब पी ली तो क्या हुआ? आप ही तो कहते हैं कि शराब बहुत अच्छी चीज है, तो आज मम्मी ने पी ली।
2: चुप रहे नादान लड़की।
3: मैं अब सब समझने लगी हूँ पापा, ना समझ नहीं रही मैं, 12वीं में पढ़ती हूँ।
2: मगर इसे तो देख किस तरह से नशे में धुत है ये तेरी माँ, आखिर इसे शराब मिली कहाँ से?
3: वो सिरे पे रहने वाले आपके दोस्त है ना महेश अंकल।
2: हाँ।
3: मम्मी और मैं उनकी बीबी यानी कि आंटी से मिलने गए थे, वहीं मम्मी ने फ्रिज में महेश अंकल की शराब की बोतल देखी और आंटी से मांग कर कुछ शराब पी ली, आंटी ने भी पिया।
2: अरे महेश की औरत पिए तो पिए, इसे क्या जरूरत है शराब पीने की? हालत देख ले इसकी, बेहोश है ये, बेहोश।
3: तो क्या पापा, जब आप भी पीकर आते हैं तब आप भी तो ऐसे ही बेहोश रहते हैं।
2: मगर ये तो अब मेरे लिए मुसीबत बन गई।
3: आप भी तो पीने के बाद मम्मी के लिए मुसीबत बन जाते हैं, आज मम्मी आपके लिए मुसीबत बन गई तो क्या?
2: मैंने भी कहा इसे शराब चखने की बात कह दिया, अब क्या करूं?
3: कुछ नहीं, क्योंकि मम्मी भी कुछ नहीं करती और आप दूसरे दिन होश में आते हैं। कल सुबह मम्मी भी होश में आ जाएगी।
2: तेरी माँ ने तो कमाल कर दिया, आज पैसे ना होने के कारण मैं सूखा रहा तो ये पीकर गीली होगी। सुबह हो गई तेरी?
1: आज क्या, मेरी तो रोज ही सुबह होती है।
2: खैर मना ले अपनी, आज तेरी जिंदगी की नई सुबह हुई है। कल तो उस महेश के बच्चे की औरत के यहाँ से खूब शराब पीकर आई थी, इतनी कि पूछो मत। कल शाम से ही बेहोश थी तू, अब जाके होश आया है तेरे को?
1: मुझे तो अब जाकर होश आ भी गया, तुम्हें तो ना जाने कब होश आएगा, और भगवान जाने आएगा भी या नहीं। तुम्हारी जिंदगी तो शराब और शराब और शराब बनकर ही रह गई है।
2: ये तू क्या कह रही है सरिता?
1: ठीक कह रही हूँ मैं, शराब के सिवा और तुम्हारे जीवन में किसी और की जगह ही क्या है, न मेरी न अपनी बेटी रश्मि की।
2: ऐसा मत बोल सरिता, तुझे पता है मैं कल से कितना परेशान हूँ। तूने शराब क्यों पी, क्या जरूरत थी तुझे शराब पीने की? इतनी शराब पीने से अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा और इस रश्मि बेटी का क्या होता, इतना तो सोचा होता।
1: और तुम जो रोज शराब पीकर आते हो, तुमने कभी ये सोचा कि कहीं अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मेरा और रश्मि का क्या होगा? बोलो बोलो, मेरा एक दिन शराब पीकर आना तुम्हारे लिए मुसीबत बन गया, और तुम जो रोज मेरे लिए मुसीबत बनकर आते हो वो?
2: मेरी बात छोड़ सरिता, मैं तो हूं ही बुरा, मगर आज तू मुझसे एक वादा कर सरिता कि आज के बाद तू कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगी। शराब अच्छी चीज नहीं है सरिता।
1: मगर तुम तो कहते थे कि शराब अच्छी चीज होती है, तुमने तो शराब की तारीफ के कई कसीदे पढ़े थे।
2: मैं गलत था सरिता, सचमुच में शराब अच्छी चीज नहीं होती, अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है सरिता। पीने के बाद आदमी गुस्सा भी तो करता है, नाली में गिरता है, गाली देता है, झगड़ा करता है। नहीं सरिता, शराब में कोई अच्छा ही नहीं है। शराब को अच्छा कहना तो पीने का सिर्फ एक बहाना है, बहाना।
1: तो फिर वादा करो कि आज के बाद तुम कभी शराब नहीं पियोगे।
2: मैं वादा करता हूँ सरिता कि आज के बाद कभी शराब नहीं पियूंगा।
3: वाह पापा, ये हुई ना कोई बात।
2: मगर सरिता तुझे भी एक वादा करना होगा कि तू अब कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाएगी।
3: अरे पापा, तो आप क्या समझ रहे हैं कि कल क्या मम्मी ने सचमुच शराब पी थी? अरे पापा, मम्मी ने तो प्लान बनाकर महेश आंटी से शराब मांग कर अपने ऊपर छिड़क ली थी, और आपके सामने पूरे समय शराबी की एक्टिंग करती रही ताकि आप शराब छोड़ने का वादा कर सकें, और मम्मी का प्लान कामयाब भी हो गया।
2: तो क्या सरिता सचमुच तुमने शराब नहीं पी थी?
1: नहीं, रश्मि ठीक कह रही है, और मुझे खुशी है कि आज तुमने शराब छोड़ने का वादा किया है। सचमुच आज मेरे जीवन में एक और सुबह आई है, जीवन का नया अर्थ लिए।
0: एक और सुबह, अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे मेरी प्रीति जोजो, मेरी इक्का और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत नाना नानी एवं बुजुर्गों के छठवें विश्व दिवस पर संत पापा लियो चौधरी के संदेश को प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा, नबी साज के ग्रंथ से लिया गया यह वाक्यांश नाना नानी एवं बुजुर्गों के छठवें विश्व दिवस के लिए पोप लियो चौधरी के संदेश की विषय वस्तु है।
1: कारी नोनी, कारी निपोती, बुंजोर्नो, बेंदेनुती।
0: 26 जुलाई एवं जुलाई महीना का अंतिम रविवार कार्तिक कलीसिया के जीवन में एक महत्वपूर्ण दिन है। आज कलीसिया यीशु के नाना नानी संत अन्ना एवं संत जोकिम का पर्व मना रही है और इसी दिन नाना नानी एवं बुजुर्गों के लिए छठवां विश्व दिवस भी मनाया जा रहा है। संयोग से ये दोनों ही अवसर एक साथ मनाए जा रहे हैं। 2021 में पोप फ्रांसिस द्वारा स्थापित इस दिवस का उद्देश्य है यह चिंतन करना कि दादा दादी और बुजुर्गों की उपस्थिति हर परिवार एवं कलीसियाई समुदाय में आशा का चिन्ह कैसे बन सकती है। तो लीजिए प्रस्तुत है नाना नानी एवं बुजुर्गों के छठवें विश्व दिवस पर संत पापा लियो चौधरी का संदेश।
2: Cari fratelli e sorelle,
0: पोप लियो चौधरी ने अपने संदेश में लिखा, प्यारे भाइयों एवं बहनों, नबी ईसाईस के माध्यम से प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं कि वे हम में से किसी को भी कभी नहीं भूलेंगे। वे हमें भरोसा दिलाते हैं कि उन्होंने हमें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है और उनका प्यार एक माँ के अपने बच्चों के लिए प्यार से भी ज्यादा है। नबी हमें एक अंतरंग एवं गहन बातचीत की झलक देते हैं जिसमें ईश्वर परिचित शब्दों में हर इंसान से अलग अलग और सभी लोगों से बात करते हैं। आज भी हम इन शब्दों को हम प्रत्येक के लिए कह सकते हैं और हर कोई सुन सकता है। मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा, ये शब्द हमें सांत्वना एवं उम्मीद से भर देते हैं। यह उस दर्दनाक एहसास का जवाब है जो दिल को परेशान करता कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। पवित्र धर्म ग्रंथ में खासकर भजन संहिता में कितनी बार उन लोगों की निराशा से प्रार्थना निकलती है जिन्हें लगता है कि उनके जीवन में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं और उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। भुला दिए जाने का दर्दनाक एहसास दुर्भाग्य से बहुत से लोगों को होता है और उनमें काफी बुजुर्ग लोग भी शामिल हैं। पोप ने कहा कि ईश्वर का प्यार जो किसी को नहीं भूलता, खुद को न्याय के कार्य और उस गुमनामी के जवाब के रूप में प्रस्तुत करता है जिसमें मानव जीवन अक्सर खो जाती है। खासकर कई बुजुर्गों का जीवन एक ऐसे पर्दे से ढका हुआ लगता है जो उनके चेहरों के हाव भाव को धुंधला कर देता और उन्हें गुमनामी में ढक देता है। ऐसे उन घरों में होता है जहां अकेलापन छाया रहता है और उन देखभाल केंद्रों में भी जहां इंसान की पहचान एक बेड नंबर या बीमारी तक सिमट जाने का खतरा होता है। अतः संत पापा ने कहा कि दादा दादी और बुजुर्गों का विश्व दिवस मनाना एक अच्छा अवसर है कि हम फिर से जानें कि कलीसिया को सभी की माँ बनने के लिए बुलाया गया है और किसी भी उम्र में हम हमेशा खुद को ईश्वर के बेटे और बेटियां मान सकते हैं। इसलिए यह दिन सभी के लिए, खासकर युवाओं के लिए, अपने दादा दादी, परिवार के बुजुर्ग सदस्यों और यहाँ तक कि उन लोगों से भी मिलने के खूबसूरत रिवाज को फिर से शुरू करने की प्रेरणा बने जिनके पास उनसे मिलने वाला कोई नहीं है। संत पापा ने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा, इस संदेश एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा उन्हें पोप का सामीप्य एवं स्नेह प्रदान करें। यह सुनिश्चित करें कि नबी के शब्द मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा एक कोमल और प्यार भरी मुलाकात का रूप ले। एक ऐसे दौर में जो तेजी और बिखराव को बढ़ावा दे रहा है, मानव अभी भी ध्यान देने वाले दिमाग, अच्छे शब्दों और कोमलता दिखाने वाले हाथों से देखभाल और पहचान पाने के लिए तरसता है। इन सभी कारणों से कलीसिया खुशी से प्रभु की प्रतिज्ञा की घोषणा करती है, मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगी। संत पापा ने कहा कि यह किसी भी उम्र में खुशी की बात है, लेकिन विशेषकर तब जब हम युवा नहीं रह जाते। यह जानना, जैसा कि पोप जॉन पॉल प्रथम ने कहा था, कि हम ईश्वर की ओर से अमर प्रेम को ग्रहण करने वाले हैं। हम जानते हैं कि जब अंधेरा लगता है तब भी उनकी आंखें हमेशा हम पर खुली रहती हैं। वे हमारे पिता हैं और इससे भी अधिक वे हमारी माँ हैं। इसलिए ईश्वर की बाहों में लौटने का निमंत्रण किसी भी उम्र में सार्थक है। बहुत से लोगों के लिए ईश्वर की कोमल करुणा का अनुभव जीवन के लंबे सफर के दौरान होता है और कभी कभी तो जीवन के अंतिम चरण में जाकर ही होता है। वास्तव में पहले की तुलना में आज यह अधिक सामान्य हो गया है कि लोग बिना किसी सच्चे आस्था अनुभव के ही वृद्धावस्था तक पहुंच जाते हैं। ऐसे मामलों में वृद्धावस्था विशेषकर इस जीवन काल में अधिक तीव्रता से उठने वाले प्रश्नों के कारण आध्यात्मिक जीवन आरंभ करने या उसे फिर से अपनाने का उपयुक्त समय बन सकती है। इस नई आध्यात्मिक यात्रा में व्यक्ति यह पहचान सकता है कि ईश्वर, जैसा कि संत अगस्तीन कहते हैं, एक माँ है। उस ईश्वर की ओर जो हमारे निकट आते और जिनकी कोमलता को हम पहचानना सीखते हैं, हम प्रार्थना में संतान सुलभ विश्वास के साथ मुड़ सकते हैं। उनकी ओर लौटने या उनकी शरण में आने के लिए कभी भी बहुत देर नहीं होती। यह हर व्यक्ति के लिए एक महान अनुग्रह सिद्ध हो सकता है। इसलिए पहले से कहीं अधिक यह आवश्यक है कि हम आपके साथ इस बात पर चिंतन करें कि जब दुर्बलता, जो जन्म से ही मानव के जीवन संगिनी रही है, जीवन पर हावी होने लगती है, तब हमारा बुलावा क्या है। संत पापा ने कहा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी नाजुकता से मत डरिए। यही दुर्बलता अपने भीतर एक नई संभावना समेटे हुए है, जो जीवन के अन्य सभी चरणों पर भी नई रोशनी डालती है। वास्तव में जब हम अपनी नाजुकता को स्वीकार करते हैं, तब हमारे हृदय एक दूसरे का सहारा बनने के लिए खुल जाते हैं और उस प्रभु को पुकारते हैं जो ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसे कोई भी मानवीय शक्ति सुनिश्चित नहीं कर सकती। हृदयों का गहरा मेल मिलाप और उनके साथ सच्ची शांति, इस तरह हम एक ख्रिस्ते के रूप में अपने बुढ़ापा को जी सकते हैं, नाजुक फिर भी बुलाए गए। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत नाना नानी और बुजुर्गों के छठवें विश्व दिवस पर पोप लियो XIV के संदेश को सुन रहे थे। अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका एक और सुबह। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओ, आपने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो शराब की लत में बुरी तरह फंसे हुए हैं। शराब की लत एक गंभीर बीमारी है। शराब की वजह से उनकी जिंदगी में अनेक शारीरिक मानसिक परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। उनकी कार्य क्षमता में कमी आती है, अच्छी भली नौकरी चली जाती है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद व्यक्ति शराब को नहीं छोड़ पाता। यही शराब का सबसे बड़ा दुर्गुण है। श्रोताओं, ऐसी अवस्था में शराबी इस लत पर काबू पाने का दृढ़ निश्चय करने पर भी अकेला इस बीमारी से लड़ नहीं सकता। इस लत को छुड़वाने का काम घर से शुरू होता है। उसे अपने परिवार, अपने मित्रों के सहारे की जरूरत होती है, जो उनके आत्मविश्वास को मजबूत कर सके, उन्हें सहारा दे सके। आशा है आज की नाटिका इस बीमारी में फंसे लोगों का मनोबल बढ़ा सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका एक और सुबह।
1: सुनो, कल रश्मि की स्कूल की फीस भरना है। मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे और तुम हो कि अनसुनी कर रहे हो।
2: सुन लिया मैंने, कोई बहरा नहीं हूँ मैं। मेरे पास पैसे नहीं है, तेरे पास हो तो तू भर दे इसकी फीस।
1: हाँ हाँ, तुम्हारे पास क्यों होंगे इसकी फीस के पैसे। तुम्हारे पास तो सिर्फ अपनी शराब पीने के लिए पैसे होते हैं, सिर्फ शराब के लिए।
2: तो क्या शराब में अपने पैसे की पीता हूँ, अपनी कमाई की? तेरी कमाई की नहीं पीता, तू अपनी कमाई अपने पास रख।
1: आखिर शराब से फायदा क्या है तुम्हें? तुम्हें पता है शराब में अगर किसी कीड़े को डालो तो वो भी मर जाता है।
2: देखा तूने, पेट के लिए कितनी अच्छी है शराब, तभी तो मैं पेट के कीड़े मारने के लिए शराब पीता हूँ।
1: शराब जैसी बुरी चीज तुम्हें इतनी पसंद कैसे है?
2: कमाल करती है तू, मुझे तो तू भी बहुत पसंद है सरिता।
1: तुम्हें पता है शराब ने कई अच्छे अच्छे घर तबाह कर दिए हैं।
2: और तुझे पता है शराब ने कई अच्छे अच्छे घरों को बना भी दिया है। बड़े बड़े व्यापारों की डीलिंग पार्टियों में शराब के साथ ही होती है।
1: तुम उनकी बात छोड़ो, आदमी के पास पैसा आते ही तमाम बुराइयां भी पैसे के साथ साथ चली आती हैं। और जब शराब जैसी बुराई हावी होती है तो फिर पैसा कहाँ गया उसका पता भी नहीं चलता।
3: मम्मी ठीक कहती है पापा।
2: तू चुप रह, ज्यादा समझदार न बन।
1: क्यों, कि तुम्हारी समझदारी पर अतिक्रमण कर रही है क्या? आखिर तुम समझते क्यों नहीं कि शराब सेहत और घर दोनों के लिए अच्छी नहीं है?
2: जब तू शराब पीती ही नहीं है तो तुझे क्या पता कि शराब सेहत और घर के लिए अच्छी होती है या नहीं? अरे शराब पीने से जहाँ सेहत बढ़ती है वहीं घर में प्यार भी बढ़ता है, समझी तू?
1: सिर्फ ऊपर ऊपर से ही ये दोनों चीजें बढ़ती हैं, भीतर ही भीतर तो शराब ही इन्हें खोखला बनाती है।
2: ये तेरा वहम है सरिता, पीने से आदमी अपने में रहता है और असीम शांति और मस्ती का एहसास रहता है।
1: अच्छा, तो क्या शराब इतनी अच्छी चीज है?
2: तो फिर तुझे क्या पता, तभी तो मैं पीता हूँ।
1: अच्छा, तब तो फिर शराब मुझे भी चखनी पड़ेगी कि क्या वाकई में शराब इतनी अच्छी है।
2: अरे छोड़, क्यों मजाक करती है? शराब और अब चखना तेरे बस की बात नहीं, इसे तो मर्द ही पी सकते हैं, मर्द। अब जाने दे मुझे, मेरा टाइम हो गया।
1: बस चले फिर शराब का गुणगान कर शराब पीने। आज 2 दिन हो गए इन्हें ऑफिस से छुट्टी लिए, अब बैठेंगे जाकर अपने शराबी दोस्तों के बीच। ठीक है, तुम कहते हो ना कि शराब चखना मेरे बस की बात नहीं, तो अब मैं भी इन्हें शराब चख कर ही बताऊंगी।
3: तो क्या मम्मी तुम भी शराब पियोगी?
1: बस अब तू देखती जा बेटी कि मैं क्या करती हूँ।
2: रश्मि, क्या हुआ है तेरी माँ को, ये इस तरह झूम क्यों हो रही है? इसकी तो आंखें भी बंद है।
3: कुछ नहीं पापा, शायद मम्मी की तबीयत खराब है।
2: तबीयत खराब है, जरा मुझे भी तो देखने दे। हैं, शराब की बदबू। रश्मि, तेरी माँ की हिम्मत कैसे हुई शराब पीने की? कहाँ से आ रही हो तुम दोनों?
3: हम लोग वो सिरे वाले महेश अंकल के यहाँ से आ रहे हैं। पापा आप भी तो शराब पीते हैं, आप तो रोज शराब पीते हैं। अगर आज मम्मी ने शराब पी ली तो क्या हुआ? आप ही तो कहते हैं कि शराब बहुत अच्छी चीज है, तो आज मम्मी ने पी ली।
2: चुप रहे नादान लड़की।
3: मैं अब सब समझने लगी हूँ पापा, ना समझ नहीं रही मैं, बारहवीं में पढ़ती हूँ।
2: मगर इसे तो देख किस तरह से नशे में धुत है ये तेरी माँ, इसे शराब मिली कहाँ से?
3: वो सिरे पे रहने वाले आपके दोस्त है ना महेश अंकल,
2: हाँ?
3: मम्मी और मैं उनकी बीबी यानी कि आंटी से मिलने गए थे, वहीं मम्मी ने फ्रिज में महेश अंकल की शराब की बोतल देखी और आंटी से मांग कर कुछ शराब पी ली, आंटी ने भी पिया।
2: अरे महेश की औरत पिए तो पिए, इसे क्या जरूरत है शराब पीने की, हालत देख ले इसकी, बेहोश है ये बेहोश।
3: तो क्या पापा, जब आप भी पीकर आते हैं तब आप भी तो ऐसे ही बेहोश रहते हैं।
2: मगर ये तो अब मेरे लिए मुसीबत बन गई।
3: आप भी तो पीने के बाद मम्मी के लिए मुसीबत बन जाते हैं, आज मम्मी आपके लिए मुसीबत बन गई तो क्या?
2: मैंने भी कहा इसे शराब चखने की बात कह दिया, अब क्या करूं?
3: कुछ नहीं, क्योंकि मम्मी भी कुछ नहीं करती और आप दूसरे दिन होश में आते हैं, कल सुबह मम्मी भी होश में आ जाएगी।
2: तेरी माँ ने तो कमाल कर दिया, आज पैसे ना होने के कारण मैं सूखा रहा तो ये पीकर गीली होगी। सुबह हो गई तेरी?
4: आज क्या? हाँ। मेरी तो रोज ही सुबह होती है।
2: खैर मना ले अपनी, आज तेरी जिंदगी की नई सुबह हुई है, कल तो उस महेश के बच्चे की औरत के यहाँ से खूब शराब पीकर आई थी, इतनी कि पूछो मत, कल शाम से ही बेहोश थी तू, अब जाके होश आया है तेरे को?
4: मुझे तो अब जाकर होश आ भी गया, तुम्हें तो ना जाने कब होश आएगा, और भगवान जाने आएगा भी या नहीं, तुम्हारी जिंदगी तो शराब और शराब और शराब बनकर ही रह गई है।
2: ये तू क्या कह रही है सरिता?
4: ठीक कह रही हूँ मैं, शराब के सिवा और तुम्हारे जीवन में किसी और की जगह ही क्या है, न मेरी न अपनी बेटी रश्मि की।
2: ऐसा मत बोल सरिता, तुझे पता है मैं कल से कितना परेशान हूँ, तूने शराब क्यों पी, क्या जरूरत थी तुझे शराब पीने की? इतनी शराब पीने से अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा और इस रश्मि बेटी का क्या होता, इतना तो सोचा होता।
4: और तुम जो रोज शराब पीकर आते हो, तुमने कभी ये सोचा कि कहीं अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मेरा और रश्मि का क्या होगा? बोलो बोलो, मेरा एक दिन शराब पीकर आना तुम्हारे लिए मुसीबत बन गया, और तुम जो रोज मेरे लिए मुसीबत बनकर आते हो वो?
2: मेरी बात छोड़ सरिता, मैं तो हूं ही बुरा, मगर आज तुम मुझसे एक वादा कर सरिता कि आज के बाद तू कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगी, शराब अच्छी चीज नहीं है सरिता।
4: मगर तुम तो कहते थे कि शराब अच्छी चीज होती है, तुमने तो शराब की तारीफ के कई कसीदे पढ़े थे।
2: मैं गलत था सरिता, सचमुच में शराब अच्छी चीज नहीं होती, अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है सरिता। पीने के बाद आदमी गुस्सा भी तो करता है, नाली में गिरता है, गाली देता है, झगड़ा करता है। नहीं सरिता, शराब में कोई अच्छा ही नहीं है, शराब को अच्छा कहना तो पीने का सिर्फ एक बहाना है, बहाना।
4: तो फिर वादा करो कि आज के बाद तुम कभी शराब नहीं पियोगे।
2: मैं वादा करता हूँ सरिता कि आज के बाद कभी शराब नहीं पियूंगा।
3: वाह पापा, ये हुई ना कोई बात।
2: मगर सरिता तुझे भी एक वादा करना होगा कि तू अब कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाएगी।
3: अरे पापा, तो आप क्या समझ रहे हैं कि कल क्या मम्मी ने सचमुच शराब पी थी? अरे पापा, मम्मी ने तो प्लान बनाकर महेश आंटी से शराब मांग कर अपने ऊपर छिड़क ली थी, और आपके सामने पूरे समय शराबी की एक्टिंग करती रही ताकि आप शराब छोड़ने का वादा कर सकें, और मम्मी का प्लान कामयाब भी हो गया।
2: तो क्या सरिता सचमुच तुमने शराब नहीं पी थी?
4: नहीं, रश्मि ठीक कह रही है, और मुझे खुशी है कि आज तुमने शराब छोड़ने का वादा किया है। सचमुच आज मेरे जीवन में एक और सुबह आई है, जीवन का नया अर्थ लिए।
0: एक और सुबह, अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे मेरी प्रीति जोजो, मेरी इक्का और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लाउडेटुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनते।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र काफी कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
3: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कन्या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के दूसरा भेद, माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है,
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: भैया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कन्या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कन्या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

0: हे मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन।
1: पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। रविवार को कस्तिल गंदोल्फो में देवदूत प्रार्थना के दौरान पोप लियो 14वें ने ईश्वर के राज्य पर चिंतन किया, जो एक खजाने के समान है और जीवन में परिवर्तन लाता है। उन्होंने ख्रिस्तों को यह पहचानने के लिए आमंत्रित किया कि क्या वास्तव में मायने रखता है। पोप लियो ने कस्तिल गंदोल्फो से देवदूत प्रार्थना का पाठ करने से पहले सुसमाचार पाठ पर चिंतन करते हुए विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
2: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
3: Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio, che il Vangelo di oggi paragona a una perla e a un tesoro.
2: यीशु की शिक्षा के केंद्र में ईश्वर के राज्य का रहस्य है, जिसकी तुलना आज के सुसमाचार पाठ में खजाने एवं मोती से की गई है। ये दृष्टांत उन लोगों के आश्चर्य को दिखाती हैं, जिन्हें कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। इतना कि सब कुछ बेचना या छोड़ देना भी उन्हें घाटा नहीं लगता, बल्कि फायदा ही लगता है। संत पापा ने कहा, वास्तव में शुरू से ही सुसमाचार लेखक यीशु के पीछे चलने के बुलावे को ऐसा दिखाते हैं जिससे रोका नहीं जा सकता। यह एक स्वतंत्र चुनाव है, फिर भी जरूरी है और एक तैयार एवं पूरे दिल से जवाब देना है। यह इस बात का पहला महत्वपूर्ण पहलू है कि ईश्वर कैसे पास है और खुद को कैसे प्रकट करते हैं। उनके राज्य का सामना एक ऐसा मोड़ है जो जीवन को सीमित नहीं करता, बल्कि उसे विकसित करता है। अगर हमारी तरफ से कुछ बदलना है तो वह सिर्फ इसलिए है ताकि हमारा जीवन सीमित ना हो, बल्कि अधिक संभावनाओं के लिए खोल सके। संत पापा ने कहा, एक दूसरी बात है जिसे यीशु बहुत महत्व देते हैं। खेत में छिपा खजाना पाने वाला शायद एक किसान होगा, जबकि मोती पाने वाला एक व्यापारी जो एक यात्री हो सकता है। इसके बाद और दो दृष्टांत हैं, जिनमें मुख्य पात्र मछुआरे और एक शास्त्री हैं, जो पुरानी और नई दोनों चीजों के जानकार हैं। दूसरे दृष्टांतों में राज्य की तुलना आटा गूंथने या अपना घर साफ करने वाली औरत से, युद्ध की योजना बनाने वाले राजा से, मीनार बनाने वाले आदमी से, प्रबंध करने वाले प्रबंधक से और चरवाहों एवं किसानों से की गई है। संक्षेप में, ईश्वर का राज्य अपनी बेमिसाल सुंदरता को अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत करता है, लेकिन सभी लोगों को एक गहरे बदलाव के लिए बुलाता है। हर कोई उसे समझता और इसकी ओर खींचा चला जाता है। आज भी कलीसिया उन लोगों का एक समूह है जो अपने मूल संस्कृति, क्षमता और जिम्मेदारियों में अलग अलग हैं, फिर भी यीशु ख्रिस्त में सभी एक के रूप में पहचाने जाने के लिए बुलाए गए हैं, जो एक छिपे हुए खजाने हैं, कीमती मोती हैं, एक जाल हैं जो बिखरे हुए लोगों को एकत्रित करते हैं। शुरू से ही यीशु ने ऐसे लोगों को बुलाया और अपने आसपास एकत्रित किया जो अन्यथा कभी एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। इस तरह उन्होंने दिखाया कि ईश्वर सिर्फ कुछ लोगों को पसंद नहीं करते, बल्कि वे अपना प्यार मुफ्त में सभी लोगों को देते हैं। खासकर छोटों या उन्हें जिन्हें छोड़ दिया जाता है। संत पापा ने विश्वासियों से कहा, भाइयों एवं बहनों, हमें बस वही वरदान मांगना है, वही उपहार जिससे युवा राजा सुलेमान ने मांगा था। यह अमूल्य मोती को पहचानने का, उस खजाने को पहचानने का वरदान है जिसके लिए सब कुछ बेच देना भी अधिक फायदेमंद है। जबकि उपभोक्ता संस्कृति हमारे पसंद को प्रभावित करती, हमें लगातार ऐसे साधन बेचने के लिए नई जरूरतें उत्पन्न करती हैं जो कभी संतुष्ट नहीं करती और कभी कभी दिल को भी विषक्त कर देती हैं। हमें यह परखना सीखना चाहिए कि क्या वास्तव में मायने रखता। ईश्वर के साथ रिश्ते का खजाना ही मायने रखता है जो हमें खुशी से खोलता और हमें एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों को और अधिक खुलकर जीने में मदद करता है। प्रज्ञा का सिंहासन, माता मरियम की प्रार्थना जीवन के लिए हमारी चाह को यीशु की ओर ले जाए ताकि यह उनमें पूरी तरह से पूरी हो सके। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरित का आशीर्वाद दिया।
3: Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum.
2: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विभिन्न घटनाओं की याद की। उन्होंने नए धन्य घोषणा की याद करते हुए कहा, कल लेबनान में 1899 से 1931 तक मरोनाइट कलीसिया के अंताकिया के प्रादि धर्म अध्यक्ष और पौत्र परिवार की मरोनाइट धर्म बहनों के धर्म संघ के संस्थापक एलियास होए की धन्य घोषणा हुई, जिन्होंने 30 साल से भी अधिक समय तक बड़ी लग्न एवं प्रेरितिक संवेदनशीलता के साथ मरोनाइट कलीसिया का संचालन किया। समाज और आशा के व्यक्ति के रूप में वे कलीसिया, समाज और राजनीति के एक जाने माने व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें महान लेबनान के पिता कहा जाता था। संत पापा ने कहा, नए धन्य की प्रार्थनाएं और दुआएं हमेशा दुनिया भर में मरोनाइट विश्वासियों के साथ रहें और लेबनान के सभी लोगों के लिए शांति का वरदान लाएं, जिसको संत पापा ने कहा कि उन्हें बहुत प्रिय है। इसके बाद संत पापा ने पौत्र भूमि और पूरे मध्य पूर्व की बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता जताई, शांति की अपील दोहराई और तुरंत बातचीत शुरू करने की अपील की। पोप ने कहा, मैं पौत्र भूमि में जारी हिंसा एवं बिगड़ती स्थिति पर चिंता के साथ नजर रख रहा हूं, जिसमें हाल में वेस्ट बैंक और गजा में कई आम लोगों की जाने गई हैं। मैं हार्दिक अपील करता हूँ कि हर इंसान की समान इज्जत और अधिकारों के आधार पर एक सही राजनीतिक समाधान के लिए बातचीत पर वापस लौटें और नई मिलिट्री कार्रवाइयों एवं एकतरफा फैसलों को नकारें, खासकर जो हर धर्म के पौत्र स्थानों के सम्मान और मौजूदा हालात का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं पूरे मध्य पूर्व की स्थिति के बारे में भी अपनी अपील दोहराता हूँ, जहाँ तेज मिलिट्री कार्रवाई से हिंसा और तबाही हुई है, जिससे कई आम लोगों की जान को गंभीर खतरा है और पीने के पानी एवं बिजली की कमी और भी बदतर हो गई है। मैं दिल की गहराई से इसमें शामिल सभी पार्टियों से गुजारिश करता हूँ कि वे हमले रोक दें और बातचीत एवं कूटनीति के लिए तुरंत जगहों को खोलें, ताकि पूरे इलाके के लिए जितने जल्दी हो सके शांति मिल सके। आइए हम दुनिया के उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो युद्ध के कारण परेशान हैं। ईश्वर जिम्मेदार लोगों के दिलों को छुए और उनके दिमाग को रोशन करे, ताकि जल्द ही मेल मिलाप हो और शांति मिल सके। हाल में फ्रांस एवं स्पेन के अलग अलग हिस्सों में लगी भयानक आग को देखते हुए पोप ने कहा, मैं उन्हें अपना सामीप्य व्यक्त करता हूँ और प्रभावित लोगों एवं बचाव दल के लिए प्रार्थना करने हेतु सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ। तत्पश्चात संत पापा ने दादा दादी एवं बुजुर्गों के 6वें विश्व दिवस की याद की, जिसको जुलाई के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। उन्होंने कहा, आज दादा दादी एवं बुजुर्गों का 6वां विश्व दिवस है, जिसकी विषय वस्तु है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। पोप ने कहा, आइए हम सब मिलकर प्रभु को उस कृपा के लिए धन्यवाद दें जो बुजुर्ग लोग कलीसिया और समाज के लिए हैं, और आइए हम उनके कीमती भूमिका का सम्मान करें और उसे महत्व देने के लिए खुद को समर्पित करें तथा हमेशा यह सुनिश्चित करें कि उन्हें सही ध्यान एवं मदद मिल सके। तत्पश्चात संत पापा ने रोम, इटली एवं विश्व के विभिन्न हिस्सों से आए हुए सभी तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों का स्नेहपूर्वक अभिवादन किया। उन्होंने रोम के टाइबर नदी में फ्योमारोला माता मरियम के जुलूस को भी प्रोत्साहन दिया और माता मरियम से प्रार्थना करते हुए कहा, यीशु की माँ मरियम इस खूबसूरत परंपरा में प्रतिभागियों और हम सभी को हर दिन सुसमाचार की शिक्षाओं के अनुसार जीने में सक्षम बनाएं। और अंत में संत पापा ने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
3: E a tutti voi auguro di cuore una buona domenica!

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने 26 जुलाई को पुर्तगाल के उत्तरी शहर लोमेगा में दूसरी आनंद राष्ट्रीय युवा दिवस में भाग लेने वाले पुर्तगाली युवाओं को एक वीडियो संदेश में प्रोत्साहन दिया कि वे अपनी बेचैनी को ईश्वर के करीब आने दें और उनके सामने अपने सबसे बड़े सवाल और गहरी इच्छाओं को प्रकट करें। संत पापा ने कहा, आप अपने भीतर की बेचैनी से न डरें, यह आपको मसीह के और करीब आने और सुसमाचार के मूल्यों की गवाही देने के लिए प्रेरित करे। दृढ़ता से यीशु के वचन में निहित हर दिन के सुसमाचार को पढ़ें और ऐसी भूमि का सपना देखना कभी बंद न करें जहां शांति और भाईचारा हो। न ही दुनिया को आश्चर्य से देखना बंद करें, न ही आशा की रोशनी के साथ भविष्य का सामना करना बंद करें। प्रिय युवाओं, किसी चीज या किसी को भी आपकी आशा चुराने न दें। संत पापा ने अगले साल दक्षिण कोरिया में होने वाले विश्व युवा दिवस का संदर्भ देते हुए कहा, लामेगा शहर में एक आनंदमय सभा जारी रखें और मुझे उम्मीद है कि मैं अगस्त 2027 में सियोल में आपसे मिलूंगा। संत पापा ने युवाओं को जिंदगी के जरूरी सवालों पर सोचने के लिए और अपनी किसी भी परेशानी को ईश्वर के सामने लाकर प्रार्थना में उनसे बात करने के लिए आमंत्रित किया। संत पापा ने जोर देकर कहा, उनसे पूछो, प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं कलीसिया और दुनिया के लिए क्या करूं? मेरा काम क्या है? क्या आप मुझे शादी के जरिए परिवार बनाने के लिए बुला रहे हैं या आप मुझे पुरोहित बनने के लिए बुला रहे हैं या धार्मिक जीवन के लिए? ये जरूरी सवाल है। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी को भी उस एक बात को कभी नहीं भूलना चाहिए जो हमारे अंदर की जिंदगी को एक रूपता देती है। ईश्वर हमेशा हमें पवित्रता के लिए बुलाते हैं और संत पूरी तरह से इंसान होते हैं, इसलिए खुद क्रिस्त की तरह सच्चे इंसान बने और आप जरूर इस दुनिया को बेहतर बना देंगे। संत पापा ने 2025 में रोम में युवा जुबली या जून में स्पेन के युवाओं के साथ अपनी हालिया मुलाकात को याद करते हुए जोर देकर कहा, युवाओं के साथ रहना हमेशा कुछ खास होता है क्योंकि आपके विश्वास का उत्साह फैलता है। आप मसीह के लिए जो प्यार दिखाते हैं वह सुकून देने वाला है। हमारे अपने समय में आप जैसे युवाओं को विश्वास से भरा और इसे कहने से ना डरते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। यह देखना बहुत अच्छा लगता है कि आप में सच्चाई के लिए गहरी प्यास है और आप उसे सच्चे दिल से खोजते हैं। यह देखना बहुत अच्छा लगता है कि आप न्याय और दया के भूखे हैं और गुजरते हुए मूल्यों से संतुष्ट नहीं हैं। क्रिस्त हमारे साथ हैं और वे ही हमारी खुशी की वजह हैं, वे ही हमारी एकता के स्रोत हैं। इन इल्लो उनो उनुम, भले ही हम बहुत सारे हैं, हम क्रिस्त में एक शरीर हैं। संत पापा ने युवाओं से कहा कि वे जहां भी हों वहां खुश रहें और सभा में शामिल सभी लोगों के लिए स्वर्गीय कृपाओं की दुआ की। उधर पवित्र भूमि के संरक्षण के स्कूलों के प्रमुख फादर इब्राहिम फलतास वेस्ट बैंक की स्थिति पर दुख जताते हैं और उन लोगों को चेतावनी देते हैं जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं और उन लोगों को भी जो इस कभी न खत्म होने वाले चक्र को रोकने के लिए दखल नहीं देते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इसराइल और फिलिस्तीन में घोषित चुनाव दोनों लोगों के लिए नया संतुलन और नया न्याय लाएंगे। फादर इब्राहिम फलतास ने कहा, गाजा की तरह वेस्ट बैंक एक ऐसा इलाका बन गया है जिसने अपना पैमाना और अपनी जगह खो दी हैं। एक ऐसी जगह जो अब पहचानी नहीं जाती, एक ऐसी जमीन जो शारीरिक और सामाजिक रूप से बटी हुई है, गहरे जख्मों से भरी हुई है और अपनी ऐतिहासिक पहचान से बेइज्जत है। इस जमीन का हर कोना हर दिन हिंसा और तबाही झेल रहा है। हर रहने वाला तंगी, पाबंदियों और तकलीफों और बेइज्जती को झेलता है जो हर गुजरते दिन के साथ और भी बदतर होती जा रही है। इतने सालों में बस्तियों ने
हर गांव सामुदायिक जीवन के हर निशान को घेर लिया है। वे फिलिस्तीनी जिंदगी को बिना अपनाए घेर लेती हैं। वे उनका दम घोंट देती हैं। वे नौजवानों की आशाओं को मार रही हैं, जो अब अपने भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे उन लोगों की उम्मीदों को तोड़ रहे हैं जिन्होंने अतीत और वर्तमान को बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। वे उन बच्चों के मुस्कान और सपनों को चकनाचूर कर देते हैं जो अपनी जमीन को जलते, सीमित होते और रंगहीन होते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा खत्म करने के लिए संत पापा लियो की जोरदार अपील सुनी जानी चाहिए, जो दोनों को जो इसे करते हैं और उन लोगों को भी जो इसे कभी न खत्म होने वाले चक्र को रोकने के लिए दखल नहीं देते। उम्मीद की इतिहास का रास्ता बदल सकता है उन लोगों को कभी नहीं छोड़ती जिन्हें ईश्वर पर भरोसा और विश्वास है। उधर बर्लिन में एक कार्यक्रम के दौरान एक मिनी वैन का तेज रफ्तार से भीड़ में घुसने के बाद स्थानीय कलीसिया जर्मन नेता और यूरोपीय अधिकारी नफरत का विरोध कर रहे हैं। बर्लिन के महाधर्माध्यक्ष हेनर कोच ने जर्मन कैथोलिक न्यूज एजेंसी को शनिवार 25 जुलाई की शाम को हुए इस हमले के बारे में कहा कि यह कितनी भयानक घटना है, नफरत को जीतना नहीं चाहिए। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और लगभग 30 लोग घायल हो गए। यह हमला जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ। रात करीब 10 बजे एक सफेद मिनी वैन टियर गार्डन सिटी पार्क में जमा भीड़ में घुसती हुई देखी गई, जिससे एक आदमी की मौत हो गई। एक महिला और 16 दूसरे लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत बहुत गंभीर है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

gatte, diligenter, di

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। रविवार को कस्तिल गंदोल्फो में देवदूत प्रार्थना के दौरान पोप लियो 14वें ने ईश्वर के राज्य पर चिंतन किया जो एक खजाने के समान है और जीवन में परिवर्तन लाता है। उन्होंने ख्रिस्तों को यह पहचानने के लिए आमंत्रित किया कि क्या वास्तव में मायने रखता है। पोप लियो ने कस्तिल गंदोल्फो से देवदूत प्रार्थना का पाठ करने से पहले सुसमाचार पाठ पर चिंतन करते हुए विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
2: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
3: Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio, che il Vangelo di oggi paragona a una perla e a un tesoro.
2: यीशु की शिक्षा के केंद्र में ईश्वर के राज्य का रहस्य है, जिसकी तुलना आज के सुसमाचार पाठ में खजाने एवं मोती से की गई है। ये दृष्टांत उन लोगों के आश्चर्य को दिखाती हैं जिन्हें कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, इतना कि सब कुछ बेचना या छोड़ देना भी उन्हें घाटा नहीं लगता बल्कि फायदा ही लगता है। संत पापा ने कहा, वास्तव में शुरू से ही सुसमाचार लेखक यीशु के पीछे चलने के बुलावे को ऐसा दिखाते हैं जिससे रोका नहीं जा सकता। यह एक स्वतंत्र चुनाव है, फिर भी जरूरी है और एक तैयार एवं पूरे दिल से जवाब देना है। यह इस बात का पहला महत्वपूर्ण पहलू है कि ईश्वर कैसे पास है और खुद को कैसे प्रकट करते हैं। उनके राज्य का सामना एक ऐसा मोड़ है जो जीवन को सीमित नहीं करता बल्कि उसे विकसित करता है। अगर हमारी तरफ से कुछ बदलना है तो वह सिर्फ इसलिए है ताकि हमारा जीवन सीमित ना हो बल्कि अधिक संभावनाओं के लिए खोल सके। संत पापा ने कहा, एक दूसरी बात है जिसे यीशु बहुत महत्व देते हैं। खेत में छिपा खजाना पाने वाला शायद एक किसान होगा, जबकि मोती पाने वाला एक व्यापारी जो एक यात्री हो सकता है। इसके बाद और दो दृष्टांत हैं जिनमें मुख्य पात्र मछुआरे और एक

0: शास्त्री हैं, जो पुरानी और नई दोनों चीजों के जानकार हैं। दूसरे दृष्टांतों में राज्य की तुलना आटा गूंथने या अपना घर साफ करने वाली औरत से, युद्ध की योजना बनाने वाले राजा से, मीनार बनाने वाले आदमी से, प्रबंध करने वाले प्रबंधक से और चरवाहों एवं किसानों से की गई है। संक्षेप में, ईश्वर का राज्य अपनी बेमिसाल सुंदरता को अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत करता है, लेकिन सभी लोगों को एक गहरे बदलाव के लिए बुलाता है। हर कोई उसे समझता और इसकी ओर खींचा चला जाता है। आज भी कलीसिया उन लोगों का एक समूह है जो अपने मूल संस्कृति, क्षमता और जिम्मेदारियों में अलग अलग हैं, फिर भी यीशु ख्रिस्त में सभी एक के रूप में पहचाने जाने के लिए बुलाए गए हैं, जो एक छिपे हुए खजाने हैं, कीमती मोती हैं, एक जाल हैं जो बिखरे हुए लोगों को एकत्रित करते हैं। शुरू से ही यीशु ने ऐसे लोगों को बुलाया और अपने आसपास एकत्रित किया जो अन्यथा कभी एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। इस तरह उन्होंने दिखाया कि ईश्वर सिर्फ कुछ लोगों को पसंद नहीं करते, बल्कि वे अपना प्यार मुफ्त में सभी लोगों को देते हैं, खासकर छोटों या उन्हें जिन्हें छोड़ दिया जाता है। संत पापा ने विश्वासियों से कहा, भाइयों एवं बहनों, हमें बस वही वरदान मांगना है, वही उपहार जिससे युवा राजा सुलेमान ने मांगा था। यह अमूल्य मोती को पहचानने का, उस खजाने को पहचानने का वरदान है जिसके लिए सब कुछ बेच देना भी अधिक फायदेमंद है। जबकि उपभोक्ता संस्कृति हमारे पसंद को प्रभावित करती, हमें लगातार ऐसे साधन बेचने के लिए नई जरूरतें उत्पन्न करती हैं जो कभी संतुष्ट नहीं करती और कभी कभी दिल को भी विषक्त कर देती हैं। हमें यह परखने सीखना चाहिए कि क्या वास्तव में मायने रखता। ईश्वर के साथ रिश्ते का खजाना ही मायने रखता है, जो हमें खुशी से खोलता और हमें एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों को और अधिक खुलकर जीने में मदद करता है। प्रज्ञा का सिंहासन, माता मरियम की प्रार्थना जीवन के लिए हमारी चाह को यीशु की ओर ले जाए, ताकि यह उनमें पूरी तरह से पूरी हो सके। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Et concevit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विभिन्न घटनाओं की याद की। उन्होंने नए धन्य घोषणा की याद करते हुए कहा, कल लेबनान में 1899 से 1931 तक मरोनाइट कलीसिया के अंताकिया के प्राधिधर्म अध्यक्ष और पौत्र परिवार की मरोनाइट धर्म बहनों के धर्म संघ के संस्थापक एलियास होए की धन्य घोषणा हुई, जिन्होंने 30 साल से भी अधिक समय तक बड़ी लग्न एवं प्रेरितिक संवेदनशीलता के साथ मरोनाइट कलीसिया का संचालन किया। समाज और आशा के व्यक्ति के रूप में वे कलीसिया, समाज और राजनीति के एक जाने माने व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें महान लेबनान के पिता कहा जाता था। संत पापा ने कहा, नए धन्य की प्रार्थनाएं और दुआएं हमेशा दुनिया भर में मरोनाइट विश्वासियों के साथ रहें और लेबनान के सभी लोगों के लिए शांति का वरदान लाएं, जिसको संत पापा ने कहा कि उन्हें बहुत प्रिय है। इसके बाद संत पापा ने पौत्र भूमि और पूरे मध्य पूर्व की बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता जताई, शांति की अपील दोहराई और तुरंत बातचीत शुरू करने की अपील की। पोप ने कहा, मैं पौत्र भूमि में जारी हिंसा एवं बिगड़ती स्थिति पर चिंता के साथ नज़र रख रहा हूं, जिसमें हाल में वेस्ट बैंक और गजा में कई आम लोगों की जाने गई हैं। मैं हार्दिक अपील करता हूँ कि हर इंसान की समान इज्जत और अधिकारों के आधार पर एक सही राजनीतिक समाधान के लिए बातचीत पर वापस लौटें और नई मिलिट्री कार्रवाइयों एवं एकतरफा फैसलों को नकारें, खासकर जो हर धर्म के पौत्र स्थानों के सम्मान और मौजूदा हालात का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं पूरे मध्य पूर्व की स्थिति के बारे में भी अपनी अपील दोहराता हूँ, जहाँ तेज मिलिट्री कार्रवाई से हिंसा और तबाही हुई है, जिससे कई आम लोगों की जान को गंभीर खतरा है और पीने के पानी एवं बिजली की कमी और भी बदतर हो गई है। मैं दिल की गहराई से इसमें शामिल सभी पार्टियों से गुजारिश करता हूँ कि वे हमले रोक दें और बातचीत एवं कूटनीति के लिए तुरंत जगहों को खोलें, ताकि पूरे इलाके के लिए जितने जल्दी हो सके शांति मिल सके। आइए हम दुनिया के उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो युद्ध के कारण परेशान हैं। ईश्वर जिम्मेदार लोगों के दिलों को छुए और उनके दिमाग को रोशन करे ताकि जल्द ही मेल मिलाप हो और शांति मिल सके। हाल में फ्रांस एवं स्पेन के अलग अलग हिस्सों में लगी भयानक आग को देखते हुए पोप ने कहा, मैं उन्हें अपना सामीप्य व्यक्त करता हूं और प्रभावित लोगों एवं बचाव दल के लिए प्रार्थना करने हेतु सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं। तत्पश्चात संत पापा ने दादा दादी एवं बुजुर्गों के 6वें विश्व दिवस की याद की, जिसको जुलाई के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। उन्होंने कहा, आज दादा दादी एवं बुजुर्गों का 6वां विश्व दिवस है, जिसकी विषय वस्तु है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। पोप ने कहा, आइए हम सब मिलकर प्रभु को उस कृपा के लिए धन्यवाद दें जो बुजुर्ग लोग कलीसिया और समाज के लिए हैं, और आइए हम उनके कीमती भूमिका का सम्मान करें और उसे महत्व देने के लिए खुद को समर्पित करें, तथा हमेशा यह सुनिश्चित करें कि उन्हें सही ध्यान एवं मदद मिल सके। तत्पश्चात संत पापा ने रोम, इटली एवं विश्व के विभिन्न हिस्सों से आए हुए सभी तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों का स्नेहपूर्वक अभिवादन किया। उन्होंने रोम के टाइबर नदी में फ्यूमारोला माता मरियम के जुलूस को भी प्रोत्साहन दिया और माता मरियम से प्रार्थना करते हुए कहा, यीशु की माँ मरियम इस खूबसूरत परंपरा में प्रतिभागियों और हम सभी को हर दिन सुसमाचार की शिक्षाओं के अनुसार जीने में सक्षम बनाएं। और अंत में संत पापा ने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: E a tutti voi auguro di cuore una buona domenica.

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने 26 जुलाई को पुर्तगाल के उत्तरी शहर लोमेगा में दूसरी आनंद राष्ट्रीय युवा दिवस में भाग लेने वाले पुर्तगाली युवाओं को एक वीडियो संदेश में प्रोत्साहन दिया कि वे अपनी बेचैनी को ईश्वर के करीब आने दें और उनके सामने अपने सबसे बड़े सवाल और गहरी इच्छाओं को प्रकट करें। संत पापा ने कहा, आप अपने भीतर की बेचैनी से न डरें, यह आपको मसीह के और करीब आने और सुसमाचार के मूल्यों की गवाही देने के लिए प्रेरित करे। दृढ़ता से यीशु के वचन में निहित हर दिन के सुसमाचार को पढ़ें और ऐसी भूमि का सपना देखना कभी बंद न करें जहां शांति और भाईचारा हो। न ही दुनिया को आश्चर्य से देखना बंद करें, न ही आशा की रोशनी के साथ भविष्य का सामना करना बंद करें। प्रिय युवाओं, किसी चीज या किसी को भी आपकी आशा चुराने न दें। संत पापा ने अगले साल दक्षिण कोरिया में होने वाले विश्व युवा दिवस का संदर्भ देते हुए कहा, लामेगा शहर में एक आनंदमय सभा जारी रखें और मुझे उम्मीद है कि मैं अगस्त 2027 में सियोल में आपसे मिलूंगा। संत पापा ने युवाओं को जिंदगी के जरूरी सवालों पर सोचने के लिए और अपनी किसी भी परेशानी को ईश्वर के सामने लाकर प्रार्थना में उनसे बात करने के लिए आमंत्रित किया। संत पापा ने जोर देकर कहा, उनसे पूछो, प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं कलीसिया और दुनिया के लिए क्या करूं? मेरा काम क्या है? क्या आप मुझे शादी के जरिए परिवार बनाने के लिए बुला रहे हैं या आप मुझे पुरोहित बनने के लिए बुला रहे हैं या धार्मिक जीवन के लिए? ये जरूरी सवाल है। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी को भी उस एक बात को कभी नहीं भूलना चाहिए जो हमारे अंदर की जिंदगी को एक रूपता देती है। ईश्वर हमेशा हमें पवित्रता के लिए बुलाते हैं और संत पूरी तरह से इंसान होते हैं, इसलिए खुद क्रिस्त की तरह सच्चे इंसान बने और आप जरूर इस दुनिया को बेहतर बना देंगे। संत पापा ने 2025 में रोम में युवा जुबली या जून में स्पेन के युवाओं के साथ अपनी हालिया मुलाकात को याद करते हुए जोर देकर कहा, युवाओं के साथ रहना हमेशा कुछ खास होता है क्योंकि आपके विश्वास का उत्साह फैलता है। आप मसीह के लिए जो प्यार दिखाते हैं वह सुकून देने वाला है। हमारे अपने समय में आप जैसे युवाओं को विश्वास से भरा और इसे कहने से ना डरते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। यह देखना बहुत अच्छा लगता है कि आप में सच्चाई के लिए गहरी प्यास है और आप उसे सच्चे दिल से खोजते हैं। यह देखना बहुत अच्छा लगता है कि आप न्याय और दया के भूखे हैं और गुजरते हुए मूल्यों से संतुष्ट नहीं हैं। क्रिस्त हमारे साथ हैं और वे ही हमारी खुशी की वजह हैं, वे ही हमारी एकता के स्रोत हैं। इन इल्लो उनो उनुम, भले ही हम बहुत सारे हैं, हम क्रिस्त में एक शरीर हैं। संत पापा ने युवाओं से कहा कि वे जहां भी हों वहां खुश रहें और सभा में शामिल सभी लोगों के लिए स्वर्गीय कृपाओं की दुआ की। उधर पवित्र भूमि के संरक्षण के स्कूलों के प्रमुख फादर इब्राहिम फलतास वेस्ट बैंक की स्थिति पर दुख जताते हैं और उन लोगों को चेतावनी देते हैं जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं और उन लोगों को भी जो इस कभी न खत्म होने वाले चक्र को रोकने के लिए दखल नहीं देते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इसराइल और फिलिस्तीन में घोषित चुनाव दोनों लोगों के लिए नया संतुलन और नया न्याय लाएंगे। फादर इब्राहिम फलतास ने कहा, गाजा की तरह वेस्ट बैंक एक ऐसा इलाका बन गया है जिसने अपना पैमाना और अपनी जगहें खो दी हैं। एक ऐसी जगह जो अब पहचानी नहीं जाती, एक ऐसी जमीन जो शारीरिक और सामाजिक रूप से बटी हुई है, गहरे जख्मों से भरी हुई है और अपनी ऐतिहासिक पहचान से बेइज्जत है। इस जमीन का हर कोना हर दिन हिंसा और तबाही झेल रहा है। हर रहने वाला तंगी, पाबंदियों और तकलीफों और बेइज्जती को झेलता है जो हर गुजरते दिन के साथ और भी बदतर होती जा रही है। इतने सालों में बस्तियों ने
हर गांव सामुदायिक जीवन के हर निशान को घेर लिया है। वे फिलिस्तीनी जिंदगी को बिना अपनाए घेर लेती हैं। वे उनका दम घोंट देती हैं। वे नौजवानों की आशाओं को मार रही हैं, जो अब अपने भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे उन लोगों की उम्मीदों को तोड़ रहे हैं, जिन्होंने अतीत और वर्तमान को बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। वे उन बच्चों के मुस्कान और सपनों को चकनाचूर कर देते हैं, जो अपनी जमीन को जलते, सीमित होते और रंगहीन होते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा खत्म करने के लिए संत पापा लियो की जोरदार अपील सुनी जानी चाहिए, जो दोनों को, जो इसे करते हैं और उन लोगों को भी जो इसे कभी न खत्म होने वाले चक्र को रोकने के लिए दखल नहीं देते। उम्मीद कि इतिहास का रास्ता बदल सकता है, उन लोगों को कभी नहीं छोड़ती जिन्हें ईश्वर पर भरोसा और विश्वास है। उधर बर्लिन में एक कार्यक्रम के दौरान एक मिनी वैन का तेज रफ्तार से भीड़ में घुसने के बाद स्थानीय कलीसिया जर्मन नेता और यूरोपीय अधिकारी नफरत का विरोध कर रहे हैं। बर्लिन के महाधर्माध्यक्ष हेनर कोच ने जर्मन कैथोलिक न्यूज एजेंसी को शनिवार 25 जुलाई की शाम को हुए इस हमले के बारे में कहा कि यह कितनी भयानक घटना है, नफरत को जीतना नहीं चाहिए। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और लगभग 30 लोग घायल हो गए। यह हमला जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ। रात करीब 10 बजे एक सफेद मिनी वैन टियर गार्डन सिटी पार्क में जमा भीड़ में घुसती हुई देखी गई, जिससे एक आदमी की मौत हो गई। एक महिला और 16 दूसरे लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत बहुत गंभीर है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।